0: लव साउथ से केटरिंग करवाओ और ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवरफुल डिशेस का मजा उठाओ। इडली, करी, सांबर, उत्पम, डेजर्ट्स और बहुत कुछ। विजिट lovesouth.ca। लव
1: साउथ पील रेनोवेशन दा पैगाम। अगर तुसी अपने घर जा ऑफिस विचले वाशरूम सिर्फ एक हफ्ते विच तैयार करवाना चाहुंदे हो, सिंपल तो लेके हाई एंड दे वाशरूम पाव लग्जरी वाशरूम तैयार करवाउन लई चेती रखो। वाशरूम स्पेशलिस्ट टीम पील रेनोवेशन एक्सटीमेट बिल्कुल फ्री। एक हफ्ते विच वाशरूम तैयार करवाउन लई कॉल करो भुपिंदर सिंह 6476481847 6476481847। वाशरूम स्पेशलिस्ट टीम पील रेनोवेशन।
2: विश्वास प्रतीक नाल रवि गुलाटी हुन नवे अंदाज विच। रवि गुलाटी लॉ ऑफिस लीगल सेवावां दा काम हो गया जे सौखा। मारो एक आवाज अजिहे कमां वास्ते। रियल एस्टेट क्लोजिंग, नोटराइजेशन, एफिडेविट्स, डेक्लेरेशन जां स्पॉन्सरशिप लेटर्स, पावर ऑफ अटर्नीज, बच्चियां लई कंसेंट लेटर्स। बैरिस्टर सोलिसिटर नोटरी पब्लिक रविंदर पाल सिंह गुलाटी 9052328700। अपॉइंटमेंट वास्ते लॉग इन करो notaryhelp.ca। रवि गुलाटी लॉ ऑफिस, ठीक बल्ले बल्ले।
3: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तुहाडा मनपसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते, क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया अनाज मार। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दालां, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स जां फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस लई अज ही विजिट करो अनाज मार, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते, एट 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट 42, ब्रैम्पटन। कॉल 9059288557। अनाज मार्ट।
4: साडा पटोला ते साथे ओला
5: जे तुसी भी हो तरह तरह दे पिज़्ज़े दे शौकीन ता आओ पिज़्ज़ा मशीन।
6: सॉलिड बम्पर चमका मारे मठारू वेल्डिंग तो पवा लो सारे।
7: मठारू वेल्डिंग वाओ, मूस बम्पर, डियर बम्पर, डीजल टैंक लॉक, ड्रिलर रैम, टायर रैक, ड्रिलर रिपेयर, अल्मीनियम प्लेट बम्पर।
8: कॉल सनी मठारू
7: 6474603055 6475।
8: मठारू वेल्डिंग, यूनिट 198 रदरफोर्ड।
9: मठारू वेल्डिंग। रेड्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान ना सुनो। सस्ता

0: नवंबर 5 से 8 तक बनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: नोट करो कि जेकर तुसी अपने घर जा बिजनेस अदारे दे विच प्रोफेशनल पेंटर द्वारा पेंट करवाना चाहुंदे हो तां चेती रखो गिल हाउस पेंटिंग जो तुहाडे घर दे विच पेंट तो पहला हर एक कोना प्रॉपर तरीके नाल कवर करदे हन। वाजिब रेट अते समय सिर काम करवाउण लई अते एस्टीमेट बिल्कुल फ्री लैण लई कॉल करो कमल गिल 647-833-5960 647-833-5960 गिल हाउस पेंटिंग।
2: कैनेडा दी मन्नी परमानी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी शाह ट्रांसपोर्ट नो चाहिदे ने कुछ एक ड्राइवर्स। इमीडिएट हायरिंग हो रही है। ओनर ऑपरेटर्स टीम कंपनी ड्राइवर्स टीम सोलो ड्राइवर्स चाहिदे ने जी कंपनी दे वास्ते। कंसिस्टेंट लराडो टेक्सास डे रन्स स्टडी माइल्स अते रिलायबल काम पूरा साल दिता जाएगा। वधेरे जानकारी लई कॉल संदीप 416-903-8390। शाह ट्रांसपोर्ट दा यार्ड लोकेटेड है 5758 Dixie Road intersection 401 and Dixie। Number ek vari phir to 416-903-8390।
1: कैलेडन सब्जी फार्म जिथो तुसी खरीद सकदे हो इना दे खुद दे खेतां विच उगाईयां जांदियां सब्जियां हरियां मिर्चा घिया मटर कद्दू लौकी शलगम टमाटर शिमला मिर्चा अते वन सवनियां सब्जियां दा राजा सरों दा साग गंदला वाला बनाया बनाया लेना विद मक्की दी रोटी जां तुसी खुद अपने घर दे विच लिया के बना सकदे हो। इस तो अलावा स्टील सरवलो पित्तल तांबा मिट्टी हर साइज दे बर्तन फोल्डिंग बेड नवारी पलंग मूड़े साइकिल तंदूर आदि खरीदन वास्ते पहुंचो 1250 एयरपोर्ट रोड इन कैनेडन एयरपोर्ट एंड मेफील्ड और कॉल 9058409000। ग्रोसरी ते ढेर सारी सेविंग ली आओ कैनेडन सब्जी फार्म।
3: बेड डाइनिंग टेबल सोफा कर ले लेना या देना तोहफा।
4: हाई एंड डिजाइन एंड क्वालिटी यानी हाई पॉइंट फर्नीचर कस्टम मेड कनेडियन मेड इम्पोर्टेड फर्नीचर ले आज ही विजिट करो हाई पॉइंट फर्नीचर
3: 7550 किम्बल स्ट्रीट मिसिसागा कॉल 647-382-5500।
5: खुशियां दे जश्न बनाओ ते रुसियां नू मनाओ अपनियां नाल बैठ के ताजे स्वादले जायकेदार फूड दा लुत्फ उठाओ। लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट आओ ताजियां स्वादलियां मिठाइयां अते जायकेदार फूड लई हमेशा याद रखो लाली स्वीट्स जिथो तुसी डाइन इन या टेक आउट भी ले सकते हो। ग्रेट फूड बेस्ट सर्विस लई लाली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पहुंचो 499 री लॉसन बुलेवार्ड ब्रैम्पटन कॉल 905-450-9054-506464।
6: लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट।
1: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚਲੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੰਗਾਲੀ ਮਦਰਾਸੀ ਤਾਮਿਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੈਨਲ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਡਰਾਮੇ ਨਿਊਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਅਨਬੀਟੇਬਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਬਚਤ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 6475545859 6475455
7: ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਈਬ CJMR ਇਜ਼ ਬੈਕ ਅਲਾਈਵ CJMR 1320 आ गया हुए छा गया हुए।
8: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJM 20
9: CNN Toronto Chawla News Network Toronto।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: Rehan Productions.
1: शहर दी आवाज, दिलां दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

मेरे वालों तुहानू सारयां नू प्यार भरी सत श्री अकाल। हुण मैं जिहड़ा गीत पेश करन जा रही हाँ यह मेरे दिल दे बहुत करीब है। गीत दा नाम है पंजाबी मुटियारा ते उम्मीद करदी हाँ तुहानू पसंद आवेगा।

शहर दी आवाज, दिलां दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: Real news, real impact. Showing you real world. CJMR 1320. CJMR 1320. The voice of the city.
1: हाँ जी सासिकाल जी
2: मुझे ऐसा कुछ कहना है।
1: बोल दो जी।
2: बहुत दिनों से सोच रही हूँ पर फाइनली आ गया। तुम्हें तो पता है कॉलेज में मुझे कितने सारे लड़के प्रपोज करते हैं।
1: अच्छा
2: कुछ तो एक्सपेंसिव गिफ्ट भी लाते हैं पर मुझे लगता है कि मेरी जोड़ी तुम्हारे साथ ज्यादा सूट करती है। आई मीन रितिका की जोड़ी खीर के साथ।
1: ओ कर जो मैडम जी तुसी तो अग्गी वधी जाने हो। मन्निया के अपने आप ते मान ता चलो सारे नु बहुत हुंदा पर एड्डी भी कोई गल नहीं मैडम जी। ओ चाहे तुसी मलमल दा कपड़ा ही हो ओ जट नु ता खद्दर ही पसंद आ पर एक गल होर है जे सरदार नु पाउणा है आ पहला अपनी बोली ते अपना बाणा इनु चेंज करके आओ फिर गल बन सकदी आ पर हुण औखा मैडम जी बहुत औखा।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।
1: जेना हुंदी संताली विच लीक मंजूर नू बेबे दी ले आउणी सी लाहौर तो जरूर अजड़ी जीन शीन पाके टौर मार दी।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर की आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 13

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: bar.
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
2: This is CJMR, the voice of the city, part of White Oaks Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.
3: चावला एंटरटेनमेंट बड़े मान दे नाल पेश करदे ने सत समुंदरों पार अपनी बोली अपना विरसा अते अपने सभ्याचार नूं समर्पित रेडियो प्रोग्राम रंगला पंज

0: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320. CJMR 1320. The voice of the city.
1: तुसी सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो।

0: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बार आएगी, आंखें बार आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है, पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो, काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान, इंसान, नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े। रेंगते रहो, सटते रहो और मरो, आए और गए, खेल खत्म, क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी, कौन समझा उसकी बात को, सब साले मुर्दे जिंदा लाशे, किसे जगाती हो। मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं, सुकून है, लेकिन ध्यान में रखना तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया, एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहां गया था, भाड़ में।
1: You are listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto.
2: CJMR 1320 AM ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਬ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੁਣ

0: नवंबर 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: नवरात्रि स्पेशल अनोखा अंदाज दी स्पेशल सेल लगन जा रही है। लेडीज मेंस पार्टी वेयर, ब्राइडल लहंगास, सूट्स, साड़ीज, कुर्तीज, अनस्टिच्ड सूट मटेरियल लेना हो तो आज ही आओ। सूट्स से ड्रेसेस कस्टमाइज भी करवा सकते हो। नवरात्रि स्पेशल कागरा चोली जस्ट $50। मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मेंशन CJMR एंड गेट 20% ऑफ ऑन एवरी ड्रेस। अनोखा अंदाज 6101 मेफील्ड रोड यूनिट 3 ग्राम। Call 905-794-4005।
2: यह टाटा आटो इलेक्ट्रिक का इथे हर तरह दी कार वैन ट्रक अते एक्सयूवी दे स्टार्टर अल्टरनेटर अते जनरेटर तुसी रीबिल्ड करवा सकदे हो। टाटा आटो इलेक्ट्रिक का स्टार्टर अल्टरनेटर जनरेटर रीबिल्ड करन दा चैंपियन। मिलो घर शंकर वाले वीर सरदार सतनाम सिंह अते अमरीक सिंह 38 एडिस्टोन एवेन्यू इन नॉर्थ यॉर्क। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-740-5555 416-740-5555। टाटा ऑटो इलेक्ट्रिक।
3: ओ हेलो यार, मेरा भी लोड ले जी, ट्रक फेर खड़ गया यार।
4: ओ प्रावा, हैप्पी बड़ियाल ते सुखा टीसी कोल जा ते ट्रक दी एक नंबर रिपेयर करा।
3: सच्ची?
4: ओ मुच्ची,
3: फेर प्राइस ट्रक रिपेयर सेंटर दे हैप्पी बड़ियाल ते सुखा टीसी, जो के इंजन रीबिल्ड, ट्रांसमिशन रीबिल्ड, रिपेयर, DPF क्लीनिंग एंड रिपेयर, इलेक्ट्रिकल रिपेयर, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस A to Z सर्विस करके देंगे।
4: इना कोड़ा सालना दा तजुर्बा।
3: हुन एड्रेस भी लिखा।
4: ले लिख ला, 1 Good Mark Place Etobicoke यूनिट 5।
3: कॉल 6479257 6477069257।
5: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਰਡ 9 ਤੇ 10 ਤੋਂ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ।
6: ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਰਡ 9 ਤੇ 10 ਤੋਂ। ਮੈਂ ਅਰਬਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਕਤੂਬਰ 10, 11, 16 ਤੇ 17 ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ।
7: Authorized by the Harkirat Singh and Kushpal Singh Pawar campaigns.
8: The 2026 Brampton municipal election is on Monday, October 26th. If you can't vote on voting day, you can vote early during advance polling. Advance polling will take place on October 9, 10, 11, 18 and 17. Voting hours are weekdays from noon to 8 p.m. and weekdays from 10 a.m. to 5 p.m. You can vote at any advance voting location in Brampton. Bring your voter notice if you received one and identification showing your name and address. Address to vote. Didn't receive a voter notice? Bring your ID with you to vote and you can update or add your voter information in person. For voting locations, voter information and a list of candidates, visit brampton.ca/brampton votes. A message from the city of Brampton.
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: आ जावे माया आ जावे मैनू

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: हाउस बेबी
1: ले ले घर गाड़ी चाहे दौलत करने दे प्यार मुझे थोड़ी मोहलत मेरा है ये सपना बना लो तुझे अपना बेबी चाहे ले ले मेरी सारी शोहरत

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: तुसी सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो

0: ओवरले फार्म ड्राइव वे पेविंग ए सब कर देने आज ही कॉन्टेक्ट करो जसबल नू इट्स 416-818-8900
1: और विजिट www.calidonpaving.com।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। इत्थे तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन, फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, लॉन्ड्री लई वाशर एंड ड्रायर दे नाल अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अपलायंसेस लगवाना चाहुंदे हो, डिलीवरी ऑन टाइम लैण लई चेती रखो। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स 16 इंटरमल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। नंबर 9057990045 9057990045 टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स।
3: जे कलोटी दा पैगाम वड्डे सारिया दे नाल, जेकर ट्रैफिक टिकट, स्मॉल क्लेम, सिटी बायलॉज जां मकान मालक किराएदार दे पौणे च फस गए हो तां साडे कई वरिया दे माहर तजुर्बे दा फायदा लवो। जे कलोटी अजिहा ना तुहाडी मुश्किल कर देंदा आसान। ट्रैफिक कोर्ट एडवोकेट्स लाइसेंस बाय द लॉ सोसाइटी ऑफ अपर कैनेडा। जे कलोटी योर रिकॉर्ड मैटर्स, यू मस्ट टेक एक्स्ट्रा केयर। नाउ न्यू लोकेशन 7920 हुरंटारियो स्ट्रीट यूनिट 43 इन ब्रैम्पटन। 9057956556 दैट्स 9057905 790-5656 J. Kaloti, tried, trusted, most effective.

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: सीके लिक्विडेशन ते चल रही है भारी सेल। 50 डॉलर वाला कंबल 100 दे 3 ले सकदे हो। 16 पीस डिनर सेट 70 वाला 35 दा। गुरबानी रेडियो 100 दे 5। कंफर्ट सेट 20 डॉलर दा। परफ्यूम 20 डॉलर दे 3। परफ्यूम गिफ्ट सेट मिलेगा 40 डॉलर दा। पैनासोनिक दा माइक्रोवेव 79 डॉलर दा। ब्रांडेड जैकेट 15 नाल दिया। बच्चों दे टॉय 50% ऑफ। ट्राईसाइकिल मिलेगा सिर्फ 40 डॉलर दा। 7 पीस ग्लास विद विस्की बोतल सेट 20 डॉलर दा। 150 डॉलर दी शॉपिंग करो ते इस सेट बिल्कुल फ्री लवो। 31 मेलनी ते स्टील ते इंडिया हरियाणा वास्ते वधिया सूट केस खरीदना चाहुंदे हो ता आओ सीके लिक्विडेशन। नंबर टू कॉल 9054055555। सीके लिक्विडेशन।
3: ताजियां सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तुहाडा मनपसंद सामान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते, क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया अनाज मार्ट। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दालां, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स जां फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी सामान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले अज ही विजिट करो अनाज मार्ट, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते, एट 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट 42, ए ब्रैम्पटन। कॉल 9059288 अनाज मार्ट।
4: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
5: HK Movers,
4: local and long distance, we also ship cars, Kailor transport and moving services.
5: For service with a smile, give us a call.
4: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
5: 416-524-6704.
4: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
6: Long distance moving specialist.
4: HK Movers.
7: HK Movers.
2: Electronics. ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਟਾਪ ਚੁਆਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਲਾਂਡਰੀ ਲਈ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਥੀਏਟਰ ਸਿਸਟਮ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅਪਲਾਈਂਸਸ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਨ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਲਈ ਚੇਤੀ ਰੱਖੋ। ਟਾਪ ਚੁਆਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, 16 ਇੰਟਰਮਲ ਡਰਾਈਵ ਐਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਨੰਬਰ 905-799-0045 5799-0045। Top Choice Electronics,

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165।
1: वाह भाभी जी, मुबारकां, तुहाडा घर ते बहुत शानदार है। कारपेट्स, वुडन, सब कमाल दे ने। लगदा है काफी खर्चा कीता है।
2: ए कमाल है जी, GTA फ्लोरिंग दा अफोर्डेबल प्राइस ते क्वालिटी दा समान। वड्डे शोरूम ते आओ, हार्डवुड कारपेट, लैमिनेट, टाइल्स दी खूबसूरत लार्ज वैरायटी पाओ। कॉल करो नव बराड़ नू 905-605-6805 905-605-6605।
3: GTA फ्लोरिंग कैनेडा।
4: GTA फ्लोरिंग कैनेडा।
1: वाह गिल साहब, ऑफिस टाइम ते काम दे विच एनी क्रिएटिविटी, उपरों एनी सारी एनर्जी, ना इस हेल्दी हेल्थ दा राज की है?
5: ओ यार काव्या, होमो केयर, होम्योपैथी फॉर बेटर हेल्थ।
2: जी कर तुसी अपनी बीमारी दे हल किसी होर पैथी नाल ना कर पाए होवो, ता एक बार होम्योपैथी दे माहर मीता ओजा नाल जरूर कंसल्ट करो। बीमारी पावे कोई भी होवे, कॉल करो
3: 6477602779 और विजिट 10 Cotter 104 ब्रैम्पटन।
6: बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा, कर ले लेना या देना तोहफा।
7: हाई एंड डिजाइन एंड क्वालिटी यानी हाई पॉइंट फर्नीचर, कस्टम मेड, कैनेडियन मेड इंपोर्टेड फर्नीचर ले आज ही विजिट करो हाई पॉइंट फर्नीचर।
6: 7550 किम्बल स्ट्रीट, मिसिसागा। कॉल 6473825500।
8: जे बिजनेस दा करना चाहंदे हो प्रचार, तां रंगला पंजाब रेडियो ते IPTV ते प्रमोशन ले आज ही कॉल लाओ सरकार 416-716-7094 Monday to Friday 11 AM to 12 PM and 6 PM to 10 PM to see 24/7 IPTV अपने business की promotion करा सकते हो। आज ही call करो 416-716-7094।
9: खुशियां ते जश्न बनाओ ते रुसियां नू मनाओ, अपने नाल बैठ के ताजे स्वादले जायकेदार फूड दा लुत्फ उठाओ। लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट आओ, ताजियां स्वादलियां मठियाईयां अते जायकेदार फूड ले हमेशा याद रखो लाली स्वीट्स, जित्थों तुसी डाइन इन या टेक आउट भी ले सकते हो। ग्रेट फूड, बेस्ट सर्विस ले लाली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पहुंचो 499 रे लॉसन बुलेवार्ड ब्रैम्पटन। कॉल 905-450-6464 450-6464
4: लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट, लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट।
10: मेरी हाथ मिनो नो चूड़िया है,
11: आज ते जान नालो ज्यादा तू सोनी लग रही है।
9: तुसी भी आओ, अपनी खूबसूरती नु सजाओ स्कारब्रो टेक्सटाइल नाल।
11: पाओ सूट, साड़ीज, लहंगास, ज्वेलरी अते फैशन एक्सेसरीज,
12: ब्यूटीफुल ज्वेलरी एंड मच मच मोर।
11: आज ही पहुँचो
9: स्कारब्रो टेक्सटाइल 2659 इस्लिंगटन एवेन्यू एट एल्बियन। कॉल 416-742-0010 416-742-0010।
13: रोज दे खाने तो हो गया बोर,
14: ट्राई करना चाहते हो कुछ होर?
15: ताजे स्वादले चाइनीज खाने ले आज ही पहुंचो एशिया गार्डन चाइनीज रेस्टोरेंट 2648 इस्लिंगटन एवेन्यू ईटोबीको। फोन नंबर 416-749-8333 यानी 416-749-8333। जे वधिया स्वादला चाइनीज है खाना ता एशिया गार्डन चाइनीज रेस्टोरेंट ही आना।
4: एशिया गार्डन चाइनीज रेस्टोरेंट।
16: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਨੂਆ। ਆਈ ਐਮ ਅ ਲੋਇਰ ਐਟ ਨੈਨੂਆ ਐਂਡ ਯੂਐਫਏ ਲੋਇਰਸ।
17: ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਅ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਅ ਸਲਿਪ ਐਂਡ ਫਾਲ, ਔਰ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ, ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਅਸ ਨੋ, ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ।
16: ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ 647-793-6889।
18: ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਨਾਮ ਬੈਸਟ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 416-451-4565 25 ਸਾਲ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਵਾਰੰਟੀ 416-451-4565 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਤੋਂ ਪਾਓ ਛੁਟਕਾਰਾ।
19: ਕਟਾਰੀਆ ਟੂਰਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ PR ਕਾਰਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ OCI ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿਲੋ ਕਟਾਰੀਆ ਟੂਰਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਵਲ 2883 ਡੈ ਰੋਡ ਐਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ 4550 ਈਬਨਜ਼ ਰੋਡ ਜੂਨ 12 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਔਰ ਕਾਲ ਅਵਤਾਰ ਕਟਾਰੀਆ 9056781200 9056781200 ਕਟਾਰੀਆ ਟੂਰਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਵਲ।
20: ਗ੍ਰਿਡਸ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ।
21: ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਐਂਡ ਦਾ ਸਮਾਨ।

0: 5247604 पे।
1: विजिट 140 एडवांस बुलेवार्ड, यूनिट नंबर 10, ब्रम्पटन। लॉन्ग डिस्टेंस मूविंग स्पेशलिस्ट HK मूवर्स।
2: अपने दंदा दा रखो ख्याल SM स्प्रिंगडेल डेंटल सेंटर दे नाल।
3: वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, विजडम टूथ, रूट कनाल, डेंचर,
4: फॉर डेंटल एक्सट्रैक्शन, क्लीनिंग, गम ट्रीटमेंट एंड इम्प्लांट।
2: SM स्प्रिंगडेल डेंटल सेंटर, 2260 बोवेड ड्राइव ईस्ट, ब्रैम्पटन। बोवेड जिंगूसी डेंटल सेंटर, 811 बोवेड ड्राइव, यूनिट 17, ब्रैम्पटन। कॉल 9057898266।
5: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320. The voice of the city. Made easy.